जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस।

मेरो प्यारो ता कैसी दुख तू मन बसे लगे न दुख सच्चे पाशा कृपा कर अज पादू ना मीना आरंभ होया सबना दे करां विच बजियां दे सतगुरु जी मेरा प्रिया बख्शिशां प्रिया हाथ रखण जी आओ हुण समा है कथा दा सत्कार योग वीर पैसा पई नवनीत सिंह जी तिना पर सरवण करदे आ जी अपनियां फुल्लां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कितै न आवै काम, जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाहीं दाम। हर नाहन मिलियै साजनै, कत पाइयै विश्राम। जित घर हर कंत न प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। श्रब सिंगार तंबोल रस, सण देही सब खाम।

बेनंतीय कर कृपा दीजै नाम। हर मेलोह स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ पादोए परम पुलाणिया दूजै लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाहीं केत।

चित दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड़ खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत

गुर रखन वाला हेत वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका संध्या दे दीवाना दी हाजरी श्रद्धा भावना सहित पर रहे हो। अज विशेष करके जो नवे महीने की प्रारंभता हुई है भादरों का महीना, उस महीने विच सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की उपदेश करते हैं, उस उपदेश नू सर्वन करन वास्ते गुरु बख्शिश गुरु खुशी प्राप्त करन वास्ते आप संगती रूप विच जुड़ बैठे हो। प्यार सहित आप दियां ने अमृत बाणी दा कीर्तन भाई हरप्रीत सिंह दे दथे पाथों सर्वन कीता है। आओ समा होया है पावन विचार दा, पावां कि आपा संध्या दे दीवाना विच लड़ीवार मलार की वार दी कथा कर रहे हां, पर अज भादो महीने दी प्रारंभता करके आपां गुरु पंचम पातशाह जी दे पावन पवित्र श्री मुख तो उचारण बारह माह विचों भादों दे महीने दा पाठ सरवण कीता है ते इस महीने राही आपां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी की बख्शिश करदे हन, ये गुरदेव जी दी कृपा लैण वास्ते एकत्र होए हां। सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर दो तीन मोटियां जिया गल्लां कहियां हन जिन्हां नूं पहला अपने जेहन विच बिठा लईए तां जो विचार समझ आ जाए। एक तां इह है कि यह जीव आत्मा इसका सच्चा पति सच्चा कंत ओ अकाल पुरख वाहिगुरु है, पर किसी भरम विच पै के जीव ने उस नूं भुला दिता है। ते जिदे भरम विच जीव आत्मा पई है कि जिदे करके भुलाया है उन्हां दे विचों कोई इसदा नहीं बनदा। जदों समा अखीरला आउंदा है जदों समा उखियाई दा आउंदा है गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे वी जिस भरम विच जीव भुलिया पिया सी ना वी आ मेरा है आ मेरा है, वो सारा कुछ ही आहिस्ता आहिस्ता इसदा साथ छड जांदा है। जेड़ा असल इसका सी उसनू इन्ने भुला दिता ते फिर अखीर चोटां पैंदियां ने दुख लगता है। तो गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे फिर नजात किवें मिले इस दुख तो इस पीड़ा तो इस संकट तो बंदा किवें उभरे ते दूजा ये भरम किवें नास होवे भी जो साडा है वह सानू सच प्रतीत होवे। तो गुरु साहब ने कहा उहदे लई गुरु चरणा विच आउणा पएगा गुरु शरण प्राप्त करनी पएगी। गुरु शब्द ही है जो ज्ञान देगा ते इह शरीर कर्मां दा खेत है, इह शरीर इक खेती है जमीन है, इत्थे जिवें दा असीं बीजांगे उहो जिहा सानूं वढना पएगा। जे भरम बीजांगे दुख बीजांगे ते दुख ही वढने पैणगे, जे सुख बीजांगे सच बीजांगे ते सच ही साडी फसल होएगा। यह गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस पावन भादो के महीने विच उपदेश दिता है कि भरम तो मुक्ति किवें होवे, सच्चे कंत नाल किवें जुड़िया जाए ते गुरु की प्राप्ति किवें होए। गुरु कृपा करे आपां वाचन का यतन करांगे। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला रसना पवित्र करो। प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फिर कृपा करो उच्चारण करो।

महिमा गनी न आवे। कांखी एक दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साधक संग सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरा है जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो उपाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सूझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से धनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बस है हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रभ माया, नानक तिन जन सरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद जति दाते, हर सिमरन नीच चहकुंट जाते, हर सिमरन तहरी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घाट घाट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक की प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महापयान दूत जम दलै, तय केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्कल होवै अत भारी, हरकु नाम किन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हरकु नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हरका नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परै, हरका नाम जपत निसुतरै, अनिक माया रंग तिख ना बुझावै, हरका नाम जपत आघावै। जेहे मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा प्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कूट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनेक विघन जय आय संगारै, हर का नाम तत्काल उधारै।
अनक ज्योन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइये साधकै संग। जिहे मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिहे पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महापयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हरि नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मान तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्थ सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूज सनाही हर हरि, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म क्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्ये फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमै बहु रतना। शरीर कटाए होमै कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै चेर जीवै, महा उदास तपी सर थीवै। अग्न माहे होमत परान, कनक अशव है वर पुहुम दान। नियोली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावै, ताउ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम सम सर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देहे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। सोच करै दिन सो अर रात, मन की मैल ना तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाण बजम का प्यो पहो व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भीख अनेक अगन नहीं बुझै, कूट उपाव दरगै नहीं सिजै। छूट सनाही ऊभ पयाल, मुहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपो ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमै शोरै। जे को जनम मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै। जिस जन कौ प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन आपो ने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना।
ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੂਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਨਿਰਧਨ ਕਹੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਹੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਨੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੂ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਹੋ ਦੇਵਉ ਦਾਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹਉ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਾਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹੇ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਲੋਕ। ਨਿਰਗੁਨਿਆਰ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰਾਖੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਬਵਿਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ, ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੂਕੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕੱਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰ, ਤੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨੇਦ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਂ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਕਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕੱਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਸ਼ ਨਾਹੇ ਕਸ਼ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਊੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਪੂਰਾ। ਕਹਾ ਬੇਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਉ ਸਗਵਨ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹ। ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗੇ ਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ, ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਪੀ, ਹੈਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ।
जिस ठाकुर से उनाही चारा काको की जय सद नम सुकारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन वूठा जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी देरासु खात पीत बरताय आनंद उलासु अपनी अमान कश बाहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगै राखै प्रभ की आगै मन है माथै उसते चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर प्रहुवत जान अनेत बिरख की छाया सिउ रंग लावै ओह बिन सह ओ मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ सिउ जो लावै नेह ताकौ हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरारथ दाम धन धन ते जन जिहे घट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखों गांड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू भीन अवर उपदेश है आप न करै आवत जावत जन्म मरै जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जान चरण पराता करौ बेनती पार ब्रह्म सब जान अपना किया आप ही मान आपै है आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब काश जाने आत्म की रहत अपना किया आप ही मान आपै है आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब काश जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए थान थलंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को राख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखान जे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै मन सास सिमरहो प्रभ ऊचे
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਤਹਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਧਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਹੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਹੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ।

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जिहे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जिहे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताको जाप जिहे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जिहे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जिहे प्रसाद सब की गात होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाव हो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब हूतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की सुबा प्रभ माहे समानी साध कह संग अगोचर मिले साध कह संग सदा पर फुले साध कह संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कह संग मनु हर बैन साध कह संग नकत हूं तावै साध संग आस चेत मन पावै साध कह संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कह संग महापुनीत साध संग के स्यों नहीं बैर साध कह संग न बीगा पैर साध कह संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कह संग ना ही हों ताप साध कह संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाई साध कै संग ना कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेटत हो तिने हाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कह संग ईहा ऊहा सोहेला साध संग बेशुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कह संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कह संग सुनौ हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ साध कह संग न मनते बिसरै साध संग सरपर निस्तरै साध कह संग लगै प्रभ मीठा साधु कह संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कह संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संयोग साध की महिमा बेद न जानै जेता सुनै तेता बख्याना है साध की उपमा ते हो गुण ते दूर साध की उपमा रही भारपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेख है एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंक को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक ज्यू वसुधा को खुदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रकाश जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी सुमाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्प का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक पुरतारै जो अंतर नाम सर्वमय भेखै भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारै नानक ओह अपरस सगल निसतारै अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मै प्रीत निरंजन दरस परत्रै रूप न भेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर न सुनै काहू की निंदा सब ते जानै आपस को मंदा गुरप्रसाद बिखिया पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए पिन कर्म करत हुए नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा ने बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक ओ वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साधु संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मै सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर ज्यों न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुखम में जाने असतूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौह वरना मैं जपै को नाम जो जो जपाए तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर धारै पास प्रेत मुग्ध पात्र को तारै सर्व रूप का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म
जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, आपने दास को आप कृपा करै, तिस दास कौ सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बेयोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करन करावण जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरेउ आप होए आनत तरंग, लखि न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पह तीर्थवासी, कई कोट बान प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कब का विचारै, कई कोट नवतन नाम तिहावै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेक आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाव हो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस ने सुतारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसासत, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरि मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते निरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन मैं जीवै मरै, कई कोट बहु जो ने फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिलेओ प्रभ अविनाश, कई कोट मांगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कौ हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तहन तहन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो बिसखार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहार एकु नेत्रे, कई कोट नाम रास पीवै अमर पहे साध साध ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रास सुख सहज सुमावै, आपने जन को सास सास सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बल हारणै जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्यो तिस पावै सोई होग, खिन मैं थापो थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा,
हुक्मे धार अधर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मै

संत कै दुख न आरजा कटै, संत कै दुख न जमते नहीं छुटै, संत कै दुख न सुख सब जाए, संत कै दुख नरक में पाए, संत कै दुख न मत होए मलीन, संत कै दुख न सोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुख न थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए, संतन कै दुखन कृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत भावै ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा तताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी कौडा न लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान भरमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावै ता लए उबार, संत का दुखी एयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं तरापै, संत का दुखी छुड़ै केला, ज्यों बुआड़ ते लखेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साधु मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरै ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत कै दुख न त्रष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए, पाया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, साबक हट तिस क्यों करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो हो दिन रात, तिसे त्या वह सास दि रास, साब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से, सलोक तजो सियानप सुरजनौ सिमरहु हर हर राय, एक आस हर मन रखौ नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक वृति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न कृष्णा लागै आए, मारे राखै एको आप, मानुख कै किश नाही हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, ननो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगै नानक ऊजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एत ओत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन देन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की कासा, तिसकी कटिय जम की फासा, पार ब्रह्म के जिस मन भूख, नानक तिसे न लागै दुख, जिसको हर प्रभ मन चेत आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तात सब बूझिया,
ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ, ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ, ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਹੇ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬੜਪਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਣੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਨਮ ਆਏ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀ ਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੇ ਕੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਾਰ ਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਾਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਉਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੇਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ਾ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ, ਜੋ ਕਾਸ਼ੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਏ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਕੇ ਬਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ, ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਰੂ ਗੁਣ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕਹੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਯੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਹੋਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੇਸ਼, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ।
ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ ਮਨ ਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਾਧ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀ ਸੁਰਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬੇਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੈ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬੇਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਾਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਆਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਕੋਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਘਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਤਿਹਾਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਬਬੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪ ਪਾਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ
प्रभ के सेवक कौ को ना पहुचै, प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। निकी किरी मैं काल राखै, भस्म करै लस्कर कोट लाखै, जिसका सास न काढ़त आप, ताकौ राखत देख रहात, मानस जतन करतब भांत, तिसके करतब व्यर्थे जात। मारै न राखै अवर न कोई, सर्ब जिया का रखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एहो मन तन त्रपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। बोलो जस जे पा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात। कर है भगत आत्म कहचाए, प्रभ अपने सेओ राहे ही समाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो। आठ पहर प्रभ बस है हजूरे, कहु नानक से ही जन पूरे, मन मेरे दिन की उठले, मन तन अपना तीन जान दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। अवर स्यानप सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजाओ साध पैरा। श्लोक सात पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ, तिस कै संग सिख उदर है, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उच्चरै, सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हटै। सतगुर सिख कौ नाम तहन दे, गुर का सिख वड भागी हे, सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुरु सिख कौ जी नाल सुमारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कछु न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बिस बिसवे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं काश परम, सह सियाण पलै न जाइये, नानक ऐसा गुरु बड भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करण आघाने, मन संतोग आत्म पतियाने। पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पहवै तिस लय मिलाए। जिह बाएक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन बबेक, काहू बोल न पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई, अनेक भगत बंधन नित कर, चरण कमल हृदय सिमर है, सद बलहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। इहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुण तास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तह तिनासे। तापत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नठे पहाई, जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेशे, पहु चूका निरपव हुए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका साथिन कृपा तहरी, साध संग जप नाम मुरारी।
थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियोही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पह प्रगास साध कै संग राच रचना अपने काल तहारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चल बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करहो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसार हो चरण कमल रिग में उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ ए तन संच हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राख हो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठता वह है सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बच है मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुबा को करह भली करनी सा सुबा भज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हर आवख दलाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रबोध हो हर कै नाए दह दिस धावत आवै ठाए ताको बिगन न लागै कोए जाकै रिदय बसै हर सोए कल ताती ठाडा हर नाओ कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत बिचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यूं रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनकूपाव न छूटन हारे सिमरत सासत बेद बिचारी हर की भगत करहो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सती रह तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सुत मीत कुटंब हर बनता इनते कहो हो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया बिसथार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंभ झूठ पा सारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना ना बिसार नानक पशु ताना गुरु की मत तू लिहे आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपाव हो सुनत कहत रहत गत पाव हो सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल ओहे अचिंत बसै सुख नाल सास गुरास हर नाम संभाल छाड़ सियान पसगड़ी मना साध संग पाव है सच तना हर पूंजी संच करहो ब्योहार इहां सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जाप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे एक उसके गुण गाओ अनंत मान तान जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे ओ प्रव्याप अनेक बिसथार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मान तान अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाच प्रभ दान कर कृपा देवहु हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाउ साध कै संग परे सरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए
सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पाया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरधा सब पूरी रब रहया सद संग हजूरी जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै जन्म जन्म का टूटा गंडै गुर पूरे तात इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन प्याया साजन संत करहु एहो काम आन त्याग जपहौ हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहौ आप जपहौ अवरह नाम जपावहौ भगत पाए करिय संसार बिन भगती तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपहु गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एहि सुआउ नेत्रहु पेख दरस सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनेक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपति जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर कसूख कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साकत कहो कित ठाए जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चालित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जनम मरण कहो कहा बिनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त कैस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तल तह शाल शेदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार
जब अपनी सोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जय सर्व कला पे परबीन तह वेद कतेब कहा को चीन। जब अपन आप उरत हरे तो सगन आप सगन कहा विचारे। जह आपन ऊच आपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हूँ आप। जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किस है व्यापत माया। आपस को आपे ही आदेश तेहु गुण का नाही प्रवेश। जह एक का है एक एक भगवंता तह कौन आचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो बिस्तार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै ताओ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पसार संत प्रताप। दोहूं पाक का आपे हे तनी उनकी सुबा उनहूं बनी। आपे हे कौतक करै आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथाह अगणत अतुलै ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार। आपे एको आप विस्थार जात स भावे तां सृष्ट उपाय। आपने पाणे लए समाए तुम ते भिन नहीं किश होए। आपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रखे तिस कोई न मारे। सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल। सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप। अंतर जमे रहे व्याप प्रत पालै जीअन बहु भांत। जो जो रचियो सो तिस अत्यात जिस भावै तिस लय मिलाए। भगत कर है हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या। करन हार नानक इक जान्या जान लागा हर एक नाए। तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई। हुकम बूझ परम पद पाई इस दे ऊपर नहीं विचार। जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निरवैर। अन दिन पूजा है गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मेल करहु आनंद गुण गावहो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करहु विचार दुर्लभ देखा करहु उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एक है सुआओ। आठ पहर प्रभ पे खुह नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसा वहो मन इच्छे नानक फल पावहो। हालत पालत दुए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मान तन नाम जप हो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करहो व्यापारी दुर्गा निभाए केप तुम्हारी। एक काटे करखो मन माहे नानक बहूर न ना आवे जाहे। तिसते दूर कहाँ को जाए उबर रखन हार ते आए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਲੋਕ

पदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेखो सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर तन के भर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चेत चेत वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक

नानक इहि गुण नाम सुखमनि। सब ते ऊच ताकी सोभा बनी, नानक इहि गुण नाम सुखमनि। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पहुंचाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुति माहु कवन, जित हुआ आकार वेल, न पाया पंडती जे हुआ लेख पुराण, वक्त न पायो खातिया जे लिखण लेख कुरान, थित वार ना जोगी जाने, रुत माहु ना कोई, जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई, किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुवै, नानक जी को आपौ जाने अगे गया न सोहै, पाताला पातालक आगास आगास, ऊड़क ऊड़क पाल थके वेद कह निकवात, सहस अठारह कहन कतिबा सुलु एक धात, लिखा हुए त लिखिए लिखे हुए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, शाला ही ती सुरत न पाइया, नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानी है, समुंद सह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनो न विसरह अंत न सिफती कह न अंत, अंत न करण दे न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण किते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे, इहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊचा थाउ, ऊचे ऊपर ऊचा नाउ, एवड ऊचा हुवे कोए, तिस ऊचे को जाने सोए, जीवड आप जाने आप आपो, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, किते मंगह जूद अपार, कित्या गणत नहीं विचार, किते खप तुटह बेकार, किते लै लै मुकर पाए, किते मूर्ख खाही काहे, कित्या दुख भूख सदमार, पेदा तेरी दातार, बंद कलासी भाण होए, हो राख न सकै कोए, जे को खाय के आखण पाए, ओ जाने जितिया महकाए, आपे जाने आपे दे, आखै से पेके के जिसनु बख्शे शिव सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण मुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुला वह मुल लै जाहे, मुल पाए मुला सुमाहे, मुल धर्म मुल दीवान, मुल तुल मुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म मुल फरमान, मुलो मुला क्या न जाए, आखा रहे लिवलाए, आख वेद पाठ पुराण, आख पढ़े करह वख्यान, आख बरमे आख इंद, आख गोपी तै गोविंद, आख ईश्वर आख सिद्ध, आख केते कीते बुद्ध, आख दानव आख देव, आख सुर नर मुन जन सेव, किते आख आखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे, ते कीते होर करे हिताक न सकह के, जीवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारां गावार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वह सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, किते वावन हारे, किते राग परिश्यो कहियन, किते गावन हारे, गावह तोनु पौन पानी बै संतर, गावह राजा धर्म द्वारे, गावह चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावह इंदेंदा सुन बैठे देवते आदर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नर कीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले, गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले, गावह

गावे खंडमंडल वरपंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चेतनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पीहो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ताया अपना जिव तिस्ती वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई हुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करै बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश तिसै आदेश साध नीलनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण कट कट वाजह नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रित सदवरा साथ संजोग विजोग दोय कार चलाव है लिखे आव है भाग आदेश तिसै आदेश साध नीलनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी खिलाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता इहु विडान आदेश तिसै आदेश आद नीलनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सुएका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद नीलनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भव लख होए लख हुवै लख वीश लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्लाया काश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते काण महेश केते बरमे काड़त कड़ियै रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रत्न समुंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पुछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोत महामल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उमरे न ठगे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे
ਜਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤੰਤ ਨੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵਿਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਣਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਉ ਖਲਾਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ

और सर्व कालुक सर्व कालुक सर्व कोपन काल जत्र जत्र विराज ही अवतूत रूप रिसा और नाम ठम न जात जाक रूप रंग न रे आद पुरुषदार मूर्त जौन आदर्शिक देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैल्यो अनुराग नाम कामहीन पेक ताम न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदय मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जानी जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानी के जेब तात्मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जे जाप आदेव नाद मूर्त अप्य सभ्य जिता परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुर कपार सर विश्व रचियो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुर कदेश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख अपे संग रख न रंग चाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तुति पुर कवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजनाद रूप असूत अंग ही न भंग न तुम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान नहीं जे रूप रंग रेत परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंगन पौ प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव मा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा भंग गत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्युत प्रचंड मितगत अखंड वालिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड बाड्य चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे भुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्या चाचरी चांदना सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग जाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृश्य भगवती छन्त्व प्रसाद कत्ते क्या चिज देश है क्या भिज भेष है क्या गंज कर्म है क्या भंज भरम है क्या भिज लुक है क्या दित सुख है के अवधूत वर्ण है के बेभूत करण है के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है कि सर्व अपर्ण है कि जगतंग कृति है कि छत्रंग क्षत्रिय है कि वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है क्या अदेव है क्या अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह कि पाक बेअब है कि गै भुल गै वह के फूल गुना है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं फहीम है कि अकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदाम है
غنیمل شکست ہے غریب الفرست ہے بلند المکان ہے زمین الزمان ہے تمیز التمام ہے رضو الندان ہے حریف العظیم ہے رضائے کی یقین ہے نکل ترنگ ہیں ابید ہیں اپنگ ہیں عزیز النواز ہیں غنیم الکراج ہیں نرکت سروپ ہیں ترمکت بپوت ہیں پربکت پربا ہیں سجگت سدا ہیں سدیوں سروپ ہیں ابیدی انوپ ہیں سمست پراج ہیں سدا سربساج ہیں سمست السلام ہے سدیو الاکام ہے نرباد سروپ ہے اگاد ہے انوپ ہے اونگاد روپ ہے اناد سروپ ہے اننگی انامی ترپنگی ترکامی تربرگنگ تربادے اگنجے اگادے سبنگ سرپاگی سسربا انوراگی ترپگت سروپ ہے چھج ہیں اچھوت ہیں کنرکن پرناس ہیں پرتول پرواس ہیں نرکت پربا ہے سدیوں سدا ہے विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनित हैं अलिख हैं दिख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा हैं गा हैं संभ हैं गम हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित्य हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपड़छन त्व प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकुं शरीक है अमितु अमीक है सदैवं प्रभा है अजय अजाय भगवती छन त्वे प्रसाद के जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चलाग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہیں غنیم الکراج ہیں غریب النواز ہیں حریف السکن ہیں ہراس الفکن ہیں کلنکن پرناس ہے سمست النواس ہیں اگنج الغنیم ہیں رجائے کرحیم ہیں سمست الزبا ہیں کہ صاحب کراں ہیں کہ نرکن پرناس ہیں بحث النواس ہیں کہ سرب الگوان ہیں ہمیش الروان ہیں تمام التمیج ہیں سمست العزیز ہیں परम परमीश हैं समस्तुल अधीश हैं अदेशुल अलेख हैं हमीशुल अपेख हैं जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जुमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मत पार चंतव प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम वरवर अगंज हर नर पर भंजन गण प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड वर्णर अमंड वन पवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तन मुदाम अंश जंग असन भंग उपमा पार गतमित उदार जल तल अमंड दिश विश्व भंड जल तन महंत दिश विश्व बेअंत वन पवनास त्रितर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद कल खंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचित गात आज जना बात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन डट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अन ग्रहण अनंत दाता महंत हर भूल मना चंत प्रसाद करुणालय है रकालय है कल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है प्रमंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत्य मृत्यामृत्य है
अमृतामृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी त्रित है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृतामृत है, जबा कृत है, अमृतामृत है, निर्णायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, निर्पनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म भस है, जस के जस है, भुजंग प्रचंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज

संताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुत जुते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रेनादंग विपूते अलंकार रूपे अलंकार लंके नमो वासवासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनासका अगंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख पेख नाम काम गाह अटाह अनाथे परमाते अजोनी अमोनी नारागे नरंगे नरूपे नरेके अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय विगनी मे हरियं करियं करिमुल रहीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते।

मरण काल का त्रास निवरिय। वो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू कर हो रक्षा। राख लो महराखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल योगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो। आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुह बद कियो। कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर्त तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार आपा अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंका निर्भका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताका कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत।

बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी पुत भुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन

है। रचा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट ठरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तनक में हरहु। रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाछव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास देता है उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। कड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैलिहु उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री आशुतोष पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन पाचत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह। हो जो याकी एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सैस पनी जय, अर्ध सैस पन तीन कही जय। पाद्र सुदीष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुदारा। सुवैया

मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री यशपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान।

सदा रहो, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कर सब सुवारना, सबना गलना समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे, सदा सिख सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नामे आधार मेरा, जिन भुखा सब गुआईया, कर सां सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टव जिस दियां हे वडियाईया, कह नानक सुनहु संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पन सब तिर कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंचदूत दुवस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तु जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ तित कर अन हदवाजी, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहु क्या करे विचारिया, तुदवा समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, एस नो हुर ताउ नाही शब्द लाग सुवारिया, कह नानक लिवै बाजहु क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान जन सारे, अंदरो जिन का मुँह तुट्टा तिनका शब्द सच्चे सुवारिया, कह नानक यो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनु, होर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिर है दादि सिख नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे, कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो कथ की करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाईए, तन मन तन सब सब गुर को हुक्म मन्ने पाईए, हुक्म मन्ने हो गुरु के राग आवो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथ हो कथ कहानी, मन चंचला चुतराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिने तू भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसै विट्टा हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चितलाई, ऐसा कम मूले न कीचै जितंत पछोताई, सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा, क्या कुआ कुखाने, आख्याता वे कह सब तू है जिन जग तू पाया, कह नान तू सदा गम तिरंत न पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जन सब तू दुपाए कवेक परसन आया, लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नान जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता केरी बिख मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खनिहो तिखी वाल हुनकी इत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे, तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन्ना मिलाहे, से हर हर सदा त्यावहे, जिस नौ कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कह नानक सच्ची साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे, सुहेला सब सुहावा सब दु सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया यो तिन कै मन वसिया, जिन ध्रुवो लिखिया आया, इक फिरह कनेरे करह गल्लां गली किने न पाया, कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सह चुपे संग सुबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया,
कहे नानक से पवित्र जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सह सहजियो मलीन है कि संयम धोता जाए मन तू शब्द लागू हर सिंह रहो चित लाए कह नानु गुर प्रसादी सहज उपजाय सहसा इव जाए जी हो मैले बारो निर्मल जी हो ता मैले तीन जन्म जुवे हारिया ये तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यों बेता लिया कह नानक सत अजिया कूड़ लागे तीन जन्म जुवे हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारों ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सत्समानी जन्म रतन जिनि खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय दिया अंतरात्मा समाली आप चढ़ सदा रह परने गुर बिन वर न जाने कोई कह नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए पावै मुक्त न हुरथै कोई पुछो भविकियां जाए अनेक जुनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिरबाणी जिन कौ नजर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाज हो होर कच्ची बाणी कहदे कच्चे कच्चे कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करहै रसना कहया कछु न जानी चिचिन का हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ सब छेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतने आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पो पाए कह करताए आपे हुकुम रताए आवे कह गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन हुए मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुए कस्यों लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजू तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागै जागत रहण विहानी माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है विड़दाता जी अगन में आहार पहुंचावे हो सुनो कोय पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानके विड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया गुण सभी को जी करता खेल चाया जात छपाणा ता जमिया परिवार भला पाया लिप छुटकी लगी तृष्णा माया मुर वरताया माया जितर विसरै मोह पजै भाव दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया अरे आप मुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विटा रहे लोक विल लाया सत सत गुर जी मिले तिस नौ सिर सौंपिया विच वाप जाए जिसता जीव तिस मिल रहे और वसै मन आए अरे आप मुलक है भाग तिना के नानका जिन हर फल लै पाए हरास मेरी मन बन जारा हरास मेरी मन बन जारा सतगुर तेरा सजानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह कटे हो दिहाड़ी तन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ बन जा रहे रसना तू अन रस रच रही तेरी प्यास न जाए हूरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए पाए हर रस पल्लै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न तृष्णा लग गए आए एहो रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए कह नानक होर अन रसा विसरे जा हर वसै मन आई शरीरा मेरिया हर तुम मैं ज्योत रखी ता तू जग मैं आया
ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਇ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾ ਗੁਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਖ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ, ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗੋਏ, ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲੇ ਆਇਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਵਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ, ਹਰ ਕਹਿ ਹਰ ਬਿਨ ਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੇਤਰੰਤ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਏ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਨੀ ਸਚਲ ਖਵਿੜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫੰਦ ਰੱਖੈ, ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਕਨਾ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਉ ਗੁਪੰਦ ਰੱਖੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੁਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸਤਿਆਵੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ, ਜਾ ਤੁਤ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੇ, ਸਤਸਬਨਾ ਕਾ ਖਸਮੈ, ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋਜਨ ਪਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵੇ।

एक रथ वाह जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझैता है सत जुग रथ संतोख का धर्म अगैरथ वाह रथ जतै का जत जोर अगैरथ वाह द्वापर रथ तपै का सत अगैरथ वाह काल युग रथ अगन

दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा ए बेनंती सुन प्रभु मेरे देहे नाम कर अपने चेरे बलहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लगी वार जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन घोर अंधार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहा सेवक जन माना परतख गुरु निस्तार नाहौ जति सति नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया अमा दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मलो काम क्रोध अर लोभ महो वस करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खुआ गुर नव निधा दरियाओ जन्म हम काल खो तो सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सभाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां जिस का तन मन धन सब तिस का सोई

ऊंधो खप्पर पंच पूटोपी काया कड़ासन मन जागोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख।

आए, कवन सुत्र भवन रहा सुमाए, घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सै आवै जाए, नानक गुरमुख।

देख निवासी किस वखर के तुम वन जारे क्यों कर साथ लंघावो पारे गुरमुख खोजत भए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर के हम वन जारे नानक गुरमुख उतर सुपारे कित बिद पुरखा जन्म वटाया काहे कौ तुझ इहु मन लाया कित बिद आसा मन सा खाई कित बिद जोत निर

गुर कै शब्द सो मुक्त भया, नानक तारे तारण हारा, हौ मैं दूजा पर हरिया। मन मुख भूलै जम की कान, पार घर जो है हाने हान, मन मुख भरम।

जी, तिस मैं ओपत खपत सोभा जी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रत्तो पत स्यों घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुद्धि, गुरमुख सर अपसर बिद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख सब

नानक गुरमुख सगल भवन की सोझी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथाले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, इस कथा का दे विचार, पवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, अकथ कथाले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला, एक शब्द जित

सुन शब्द अपरंपर धारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सचराते, नानक आप

सकै, बिन शब्द नाही पत सकै, क्यों कर बुझै पावै पार। नानक मनमुख न बुझै गवार, कुबुद मिटै।

सच पाई। सो शब्द का कहा वास कथियले, जित तरिय भवजल संसारू। त्रै सत अंगुल वाई कही है, इस कहो कब

गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन घर आसन बैसे, नाभ पवन घर आसन बैसै, गुरमुख खोजत तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रिभवन जोत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबू न जावै। जा इहो हिरदा देह न होती, तौ मन कै ठहरहता। नाभ कमल अस्त

न होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त न कोई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया न जाए, बिन सतगुर भेटे महान दुख पाए। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार, नानक

पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन कौ कुर्बान है। अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सो जी हुई, नानक सब जुगे।

0: का पता ढाके अपने सेवक की सफर रखे
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक